कूड़ पर जा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार कूड़ मिया कूड़ बिबे खप हुए खार कूड़ कूड़ा ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मा

पौड़ी तान में नतल इखा जमले का मस्त खिलाई है कूड़ा लल छड़ी और मन लखते आई है फल ते वे हो पाए जे वे कर के माई है जे होवे प्रभु के कटे तरह दे पाई है मत थोड़ी से प्रवाह है मन

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संध्या करहे प्यार धर्मी धर्म करहे गावा वे मंगे मोख द्वार जति सदा वे जुगत न जाने छड़ वहे करवार सब को पूरा आपे होवे।

पौड़ पड़े गलता में साधना मारी है जे हाथा ले काला ते वह नौ पचारी है ऐसी कलाने की भेज गई गया हारी है पढ़ी।

में शरीर का कृत कृत बाह जुग जुग फेर बटा यह ज्ञान बुझता है सतजुग रथ संतोख का धर्म ग्रथवा हो तृतय रथ जतय काल जोर अग्रथवा हो।

सबको आके अपना जिसने सुचन कनिया की ताया को अपना पीले का संगीय है जरना नहीं है जग तक आए तो गर्भ हो गई है मंदा किसने आखिया पढ़ करे हो बुझी है मूर्खे नानन जी है मूर्खे नानन जी है।

तेरे कवन कवन गुन कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णन न सको,

मृत्यु अजुनी सैमं गुरु प्रसाद बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे ज्ञान त्यान कछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी वड्डी।

0: दंडात वंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना का पाठ भाई साहब जी पासों सरवण किया। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकागर करदे होए निमाणे जे हो के गुरु पातशाह जी दे पावन चरणा विच जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द दे राहीं मनुखी दुनियावी जीवन नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी।
1: वडहंस महला चौथा कोड़ियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद

आप जी रोजाना इस अस्थान तों अमृतमई बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। धन धन गुरु रामदास पातशाह जी वल्लों वडहंस राग दे विच घोड़ियां दे सरलेख हेठ ये पावन शब्द उचारण कीते। घोड़ियां दे सरलेख हेठ दो शब्द ने। पहले शब्द विचों दो पदियां दी विचार कल दे दीवाना विच आप जी सरवण कर चुके हो। तीसरे और चौथे पदे दा जो पाठ आप जी ने सरवण कीता गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी पावन अंग 575 दे उपर सबाईमान है। घोड़ियां जदों असी बच्चे दा ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: महद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कायंत न पार।
1: सिमरा से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया।
0: हर सिमरन कर पगत पगटाई हर सिमरन लग बेद उपाय।
1: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचो कुंड जाते।
0: हर सिमरन थारी सब तरना सिमर सिमर हर

0: आपस ऊपर करत घुमार
1: अस्त्र प्रसाद की शरण नान जब जब जीवे अर के चरण
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दरब को
1: मिथ्या नेत्र

0: अवर कच अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हूँ
1: धन हर प्रभु प्रवीण बार पेख न कहूँ पीना
0: अवर उपदेश आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे।

0: प्रसाद
1: बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन
0: प्रसाद संसुख बसना सिमरो तिस रसना
1: प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याए ध्यान जो
0: प्रसाद पाठ नंबर हंडावे तिसे त्यागत अवर लुभावे
1: प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस
0: प्रसाद के सबको मान्य मुक्ता को जस रसन बखाने।

0: प्रसाद असुर हस्त सुमारी मंत्रिस प्रभु को कबू ना
1: भी प्रसाद भाग पिलक अपने मना
0: तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सट से दिया।

0: सहजे
1: जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद सपूर्ण फले
0: जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समा
1: ऐसा प्रत्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो
0: जे प्रसाद तो परगर संसार तिस प्रभ को मूल न मनो
1: जे प्रसाद तेरा प्रताप दे मन मूड तक हो जा
0: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूर
1: जे प्रसाद तू पावे सारे मन मेरे तू था
0: सुरा प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जब
1: आव

0: साधन मीत कुटुंब निस्तारे
1: साधु के संशोधन पावे जिस दंते सबको बरसावे
0: संग धर्म राय कर सेवा साधक संग शोभा सुर देवा
1: साधु

0: गुर प्रसाद क्या प्रहरी मन की बासना मनते तरे
1: इंद्री जित पंच दोख तेरे नानक कोट मदे को ऐसा
0: दसनो सोच सुख परसो प्रसन्न।

0: धर्म राय तिस्करे खुआर
1: प्रसाद जक्का मिटिया मान सोजन नानंद दरगाह परवा
0: कोट कर्म करे हूँ धारे श्रम पावे सगले बिरथारे।

0: मैं किस करता तब गर्भ जोन में फिरता
1: अवतार को बैरी में तवला ने चल नाही ते
0: तब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए तब
1: कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसानन को छूटे
0: खटे लग को उड़धावे त्रिपत नावे माया पाचे
1: अनक भोग दिखिया के करे न तब तावे खप खम मरे
0: न संतोख नहीं को राजे सुवन मनोर बिरथे
1: सब रंग सर्व

0: कह किस नाही
1: तिसका कुंभु सुख होए तिसका नवरा कंठ परोए
0: सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे
1: उस मन में कर्णकार कर्म न मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो।

0: संघ जिसका मनमानिया नानक तिने निरंजन
1: गुरु प्रसाद अपने आप सुजे की जानो तिसना बुझे
0: संघ हर हर जस कहत सर्व रोग ते हर जन रह
1: अंजन कीर्तन के मुखयान ग्रस्त में सोई निर्बा
0: जी जन की आशा तिसकी कटिया जम की
1: फाड़ की जिस मन भोग नानक तिसना लागे दुख
0: ब्रह्मचित आवे सो संस

0: देवदास
1: दर्शन सत सत पे कणह नाम सत सत्यम नह
0: आप सत सत सब धारिया पे गुण
1: सबदे सत सत भक्ता सुर सत सत जसंता
0: जनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत सुर हृदय जन मान्या करण क्राम तन मूड पछन्या।

0: धन काटे गुर का सिख विकार ते हटे
1: गुरु सिखो नाम धंदे गुर का सिखो भागी है
0: सतगुरु सिख का हलत पलस सवारे नानक सतगुरु सिख को जी नाल सुमारे
1: गुरु से गुजरे गुर की आज्ञा मन में सहे
0: आप उसको कर कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय सद्यावे
1: मन गति सतगुरु के पास।

0: अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा
1: प्रभु जन कोई अमृत पीवे अमृत
0: का नाई कदे विनाश जाके मन प्रगटे
1: गुणता नाम ले सच सेवक को दे
0: माया के संग न ले मन में रखे हर हर
1: अंधकार।

0: सब किछ दिया सो क्यों बिसरा जी जीवन
1: सो क्यों बिसरे जे अग्नि में रखे गुर प्रसाद को बिल्ला लाखे
0: जन्म जन्म का टूटा
1: गुरु पूरे से बजाया प्रभु नानक ग्रंथाया
0: संत करो एक आमान त्याग जपो
1: हर नाम

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथमा भगवती समर कै

सुख रोग भया जा सुखता न हो। करता करना मैं नाही जाहो करी न हो। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाए लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर है। तू सच्चा साहिब सिफत सवालो जिन की सो पार पिया। कहो नानक करते किया बातां जो किश करना।

ताएं अमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो, आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछान, काट काट के पट पट की जान। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा

मूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा।

दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाय नहरो, ता के ताप तनक मोरियो, रिद सिद कारमो सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें

दुष्ट दोहते रहा, अड़ग केत मैं शरण ते हारी, आप हाथ दै लेहु उबारी, सर्व ठौर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, अड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहु उबारी, सर्व ठौर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण।

जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास। एक ना हुक्म समाए लेख ना हुक्मे करे बिना, एक ना पाने कट ले एक ना माया बिच निवास। ए बपे आख ना जापई जा किसे आने।

0: बिस्माद रूप बिस्माद रंग बिस्माद न कै फिरे जंग बिस्माद पौन बिस्माद पानी बिस्माद अग्नि खेडे विडानी बिस्माद धरती बिस्माद खाणी बिस्माद साध लगे प्राणी बिस्माद संजोग बिस्माद विजोग बिस्माद भुख बिस्माद पोग बिस्माद सिफत बिस्माद सलाह बिस्माद उजड़ बिस्माद राह बिस्माद नेड़े बिस्माद दूर बिस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया बिस्माद नानक बुजन पूरे पाग महला पहला
1: कुरद सह कुरद सुनिए कुरद भाव सुखसा कुरद पंथ तलिए

सवैये महल्ले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख त्याए बरदाता संत।

परन चार खाट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा, गावे गुण शेष सहस जिहबा रस, आद अंत लिव लाग तुना, गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानेओ, कब कल सोजस गाऊं गुर नानक, राज जोग जिन मानेओ।

कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन कौराज अपह भगत जन दियो, कल युग परमान नानक गुरे।

जोहन पाप बिदारन को हर तारन तरन समरथ सबै बिद कुलै समूह उदारन स्यों चित चेत अचेत जान सत संगत

0: संग लो होचो काज अलप सुख बंदन कोट जन्म कहां दुख पो सिखिया संत नाम पज नानक राम रंग आत्म स्योरो
1: सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो तारन तरन खिन मातर जाको दृढ़ तारे शब्द रिद विचारे काम क्रोध खोवे जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान विखियाता अहनस ध्यान तावे पलक ना सोवे जियो जाको देखत दृदर जावे नाम सुन दान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवे जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो जबलोनी भाग लीला रुदे तबलो भ्रमते फिरते वो तायो कल कोट समुंदर में बोडद थे कबहू मिट है नीरे पछतायो तत विचार जे मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
2: काल समुद्र पे रूप प्रगट हर नाम उधारन बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानियो पयो तसम सर सोई तरन गगन नव खंड में